नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीशा स्वागत करती हूँ आपका एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 एफएम पर। हमारे पास आज बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि आज का विषय है प्यार। चलिए दिन की शुरुआत एक प्रार्थना गीत से करते हैं, जो हर्षिता हमारे लिए गाएंगी।

0: कहा जाता है कि प्यार तब होता है जब हमें हमारे साथी की खुशी किसी भी चीज से ज्यादा प्यारी लगती है। अब श्रेया हमारे लिए कविता पाठ पढ़ेंगी।
1: मेरी कविता का शीर्षक पिता है। माँ घर का गौरव तो पिता से घर का अस्तित्व होता है। माँ के पास अश्रुधारा तो पिता के पास संयम होता है। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को सहज ही भूल जाते हैं। कभी ठोकर या चोट लगने पर वो माँ ही मुंह से निकलता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे ही मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकटों के लिए माँ है, पर बड़े संकट आने पर पिता ही याद आते हैं। पिता एक वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में संपूर्ण परिवार सुख से रहता है।
0: नमस्ते, आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM। अगला कार्यक्रम निकिता, सिमरन, पूर्णिमा, प्राची और कुशाली पेश करेंगे। वह एक समूह में प्यार के बारे में चर्चा करेंगे।
2: अब जब कोई प्यार की बात करता है तो लड़का और लड़की के बीच वाला प्यार ही हमारे दिमाग में पहले आता है। क्यों? परिवार का प्यार किसी को क्यों याद नहीं आता? माना के अब भी ऐसे परिवार हैं जिनके बीच सच्चा विश्वास और प्यार देखने को मिलेगा, पर उससे ज्यादा लोग रिश्तों की अहमियत भूल रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि रिश्ते स्वार्थ से नहीं, प्यार से टिकते हैं। वे भूल रहे हैं कि अपना परिवार ही सुख दुख का साथी होगा आखिरी तक। कोई भी ऐरा गेरा इंसान आपके लिए इतना कुछ नहीं करेगा, परंतु खून के रिश्ते अब स्वार्थ के बन रहे हैं।
3: एक जमाने में परिवार में सच्चा प्यार देखने को मिलता था, जहां सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, सही मायने में एक दूसरे का दर्द समझते थे, उनकी मदद करते थे और सबकी खुशियों में शामिल होते थे।
4: हाँ, ऐसा ही तो होना चाहिए। परिवार का यही तो अर्थ है। परिवार के लोग अपने ही खून के होते हैं, चाहकर भी उनसे रिश्ता तोड़ नहीं सकते। परिवार का अर्थ यही है, जहाँ सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरों के तकलीफों को अपना समझकर उन्हें सुलझाने में मदद करे। दूसरों की खुशियों में खुश होना, ना कि जलन का भाव दिखाना, यही परिवार है।
5: अब परिवार में ऐसा नहीं है। पहले और अब में जमी आसमां का फर्क है। परिवारों के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर कारण जो भी हो, परिवार के बीच सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए।
6: किसी परिवार के सदस्य को खुश देखकर घर के ही लोगों को जलन हो तो परिवार का क्या फायदा, प्यार का क्या फायदा? और आजकल तो बुजुर्गों की किसी को फिक्र नहीं है। एक तरह से बुजुर्ग लोग परिवार की नींव है। अभी तो सब उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या ये प्यार है? नहीं, फिर उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करना, आखिर तक यही प्यार है।
3: आजकल तो बच्चे और माँ बाप जैसे अजनबी बन गए। साथ में बैठकर एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं, साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते। सब अपने अपने दुनिया में लगे रहते हैं। क्यों पहले जैसे प्यार अभी परिवार के सदस्यों के बीच नहीं रहा?
4: पीढ़ी के अंतर की वजह से बच्चों और माँ बाप के बीच बहुत सारी चीजों को लेके बहस होती है, झगड़े होते हैं। बच्चा समझना नहीं चाहता और माँ बाप बच्चों को अपनी मनमानी करने नहीं दे सकते।
6: इसके कारण भी उनके बीच बहुत दूरियां आ जाती है। गुस्से में वे एक दूसरे को समझने की क्षमता खो देते हैं। ये कैसा प्यार है? माँ बाप और बच्चों का रिश्ता तो अटूट होता है। माँ बाप अपने बच्चों से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर क्या आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ पाते हैं? क्या उतना ही प्यार अपने परिवार वालों को दे पाते हैं?
5: वो सच्चा प्यार अब परिवारों के बीच देखने को ही नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अपने परिवार के लोग ही अजनबी बन जाएंगे। रिश्तों की अहमियत, अपनों का प्रेम कोई नहीं समझता।
3: पीढ़ी के अंतर की बात तो एकदम बराबर है। कई बच्चे जबरदस्ती से वही करते हैं जो उनके माँ बाप चाहते हैं, और कई बच्चे तो वो करते हैं जो उनके माँ बाप नहीं चाहते। ये दोनों चीजें ही रिश्ते को खराब कर देती है।
2: पर इससे अच्छा दोनों तरफ से बराबर की बातचीत होनी चाहिए और एक सही निर्णय लेना जो दोनों के लिए ठीक हो। वजह चाहे जो भी हो, बदलाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज के लोग सच में रिश्तों की अहमियत भूल रहे हैं। अपनों का प्यार क्या है ये कोई समझना नहीं चाहता। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी गलतियाँ सुधारनी चाहिए। परिवार का प्यार क्या होता है ये हर किसी को समझना चाहिए।
0: प्यार कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने पाया है, असल में प्यार ने आपको ही पा लिया है। ऐसे ही और भी मजेदार शायरियाँ बताने आ रही हैं अमृता।
7: इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए कि एक नजर देखा और बस उन्हीं के हम हो गए। आंख खुली तो अंधेरा था, देखा एक सपना था, आंख बंद की और उन्हीं सपनों में फिर सो गए। रात होगी तो चांद दुआई देगा, ख्वाबों में आपको वह चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत है जरा सोच कर करना, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा।
0: बहुत खूब अमृता। दोस्तों अब मैं आपका परिचय दिशा और रचना से करवाना चाहती हूँ, ये प्यार के बारे में अपनी राय बताएंगे।
8: प्यार क्या है? प्यार या प्रेम एक एहसास है। प्यार अनेक भावनाओं का रवैयों का मिश्रण है जो पारस्परिक स्नेह से लेकर खुशी की ओर विस्तारित है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है। ये किसी की दया भावना और स्नेह प्रस्तुत करने का तरीका भी माना जा सकता है। खुद के प्रति या किसी जानवर या किसी इंसान के प्रति स्नेह पूर्वक कार्य करने या जताने को प्यार कह सकते हैं। कहते हैं कि अगर प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। प्यार दोस्ती यानी पक्की दोस्ती से भी तुला जा सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्यार एक एहसास है जो एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति महसूस करता है।
9: मैं रचना देश प्रेम के बारे में कहानी सुनाना चाहती हूँ। नौ अकाली के दिनों की बात है, वहाँ गांधी जी की पद यात्रा चल रही थी। एक दिन गांधी जी देवीपुर नामक ग्राम में पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। ध्वज तोरण पताका आदि से सजावट की गई। गांधी जी ने वह सब देखा तो बड़े गंभीर हो गए, पर उस दिन मौनवार होने के कारण बोले कुछ नहीं। शाम को मौन समाप्त होने पर उन्होंने मुख्य कार्यकर्ता को बुलाकर पूछा, आप ये चीजें कहाँ से ले आए? उस बाई ने कहा, हम सब ने 8-8 आने देकर 300 रुपये इकट्ठे किए, उसी में से ये चीजें मंगवाई है। बापू आप यहाँ कब कब आते हैं? गांधी जी को बड़ी वेदना हुई,

0: वह अनुचित है। आपको मेरे प्रति प्रेम हो तो मेरी बातों पर अमल करें। कितने कत्लेआम के बाद इन फूलों पर इतना रुपया खर्च करना आपको कैसे सूझा, यह मैं नहीं समझ सका। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, फिर आपने विलायती और देशी मिल का कपड़ा, रेशम और रिबन, इन सब का सजावट में इतने मेल किया, यह सब मेरी निगाह से बहुत बुरी है। गांधी जी की अंतर्वार्ता में से निकले ये शब्द शत शत मुख से आज भी चीख चीख कर देशवासियों से कह रहे हैं, अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में प्रेम और आदर है तो मुझे धोखा मत दो। मैंने जो कुछ कहा है उस पर चलो, उस पर अमल करो।
1: धन्यवाद दिशा और रचना। दोस्तों, कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। अंत में वर्षा, प्रियल और हर्षिता हमारे दर्शकों के लिए गाना गाएंगे।

आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM। वाह, इतना सुहाने गाने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने प्यार के बारे में बहुत कुछ सीखा और अलग अलग लोगों की राय भी ली। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हम सब की तरफ से दर्शकों का शुक्रिया करना चाहती हूँ।